0: वोडाफोन मेकअप नंसन सीन एंड द कार्बन निकाले को द कार्बन करके कनो ऑलरेडी के द फाइव अप यू ऑन द बुइंतारा के द ने बुइंतारा द रिचार्ज द फोर अप यू ऑन द बुइंतारा द थ्री अप यू ऑन द बुइंतारा के द द वनतारा द रिचार्ज और द टू अप यू ऑन द वोवर के द टेन वनतारा नो कोन द वन वनतारा ऑन नेट मनी यू बुकिंग द वनतारा और द टेन वनतारा इन अ बेटर डेना द वन द बुम सो नो वन रिचार्ज इन अ बेटर डेना वोवर द बुम द बुइना और द बुइना द वन ऑन रिचार्ज इन अ बेटर डेना यू बुकिंग द लो द बुम Awai tu wabu intara, ibu kini siwa tu bong. Awai kerja nari, ada tu intara, atau tu nama intara tu recharge. Ada nak kena ada benda lain, ina nanti tu punya tu bong. Iri boroi, aje kau nak kira kira kau ni. Nanti kau ni nak kira, nanti mereka penansa.
1: Holy pass. Orang kait boroi, yon te holy pass.
0: Karena kita am dada, ayak esana. Awak kerja kini ke bong ana. Cinta mana intara, bona. Ina nanti tu mana tu bong. Orang kait star, tu mana tu bong. Ibu kini kau nak nanti boroi ye. Iri semua agi pun nak kira kira kau ye. One home.